0: பாடலை தொடர்ந்து கேட்க போகிறீங்க விவித் பாரதி தமிழ் எஃப்எம் 102.3 ஒரு சின்ன விளம்பர இடைவேளைக்கு அப்புறமா.
1: शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
2: तो ऐसा बोलो ना।
1: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान।
3: ये हुई ना बात।
4: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके साथ।
5: 102.3 FM